0: और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया है तो कह देंगे कि उनको गालिब और इल्म वाले खुदा ने पैदा किया है।
1: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون
0: जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह मालूम करो।

0: ताकि तुम उनकी पीठ पर चढ़ बैठो और जब उस पर बैठ जाओ फिर अपने परवरदिगार के एहसान को याद करो और कहो कि वो जात पाक है जिसने उसको हमारे जेरे फरमान कर दिया और हम में ताकत न थी कि उसको बस में कर लेते। और हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं।
1: वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़अन इन्नल इंसाना लकफूरुम मुबीन।
0: और उन्होंने उसके बंदों में से उसके लिए औलाद मुकर्रर की, बेशक इंसान सरीह नाशुकरा है।
1: अम इत्तखज़ मिम्मा यखलुकु बनातिन व अस्फाकुम बिल बनीन।
0: क्या उसने अपनी मखलूकात में से खुद तो बेटियां ली और तुमको चुनकर बेटे दिए।
1: वह इजाबुश

0: तो उस पर सोने के कंगन क्यों ना उतारे गए, या ये होता कि फरिश्ते जमा होकर उसके साथ आते।
1: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين।
0: غرض उसने अपनी कौम की अक्ल मार दी और उन्होंने उसकी बात मान ली, बेशक वो नाफरमान लोग थे।
1: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين।
0: जब उन्होंने हमको खफा किया तो हमने उनसे इंतकाम लेकर और उन सबको डुबो कर छोड़ा।
1: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين।
0: और उनको गए गुजरे कर दिया और पिछलों के लिए इबरत बना दिया।
1: ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون।
0: और जब मरियम के बेटे ईसा का हाल बयान किया गया तो तुम्हारी कौम के लोग उससे चिल्ला उठे।

0: और वो बहुत बाबरकत है, जिसके लिए आसमानों और जमीन और जो कुछ उन दोनों में है सब की बादशाहत है, और उसी को कयामत का इल्म है, और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे।
1: वला यम्लिकु अल्लदीना यदउन मिन दूनिही शफाअत इल्ला मन शहिद बिल हक वा हुम यअलमून।
0: और जिनको ये लोग खुदा के सिवा पुकारते हैं वो सिफारिश का कुछ इख्तियार नहीं रखते, हाँ जो इल्म और यकीन के साथ हक की गवाही दें वो सिफारिश कर सकते हैं।
1: वलइन सअलतहुम मन खलकहुम लयकूलुन الله فأنا يؤفكون।
0: और अगर तुम उनसे पूछो कि उनको किसने पैदा किया है तो कह देंगे कि खुदा ने, तो फिर ये कहाँ बह के फिरते हैं।
1: वक

0: उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिदाता है और वही मारता है, वही तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादा का परवरदिगार है।
1: बल हुम फी शक्की यलअबून,
0: लेकिन ये लोग शक में खेल रहे हैं।
1: फौतकिब यौम तअति समाउ बिदुखान मुबीन,
0: तो उस दिन का इंतजार करो कि आसमान से सरीह धुआं निकलेगा।
1: यौशन الناس هذا عذاب أليم,
0: जो लोगों पर छा जाएगा ये दर्द देने वाला अजाब है।
1: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون,
0: ऐ परवरदिगार हमसे इस अजाब को दूर कर, हम ईमान लाते हैं।
1: أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين,
0: उस वक्त उनको नसीहत कहाँ मुफीद होगी जबकि उनके पास पैगंबर आ चुके जो खोल खोल कर बयान कर देते थे।
1: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون,
0: फिर उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया और कहने लगे ये तो पढ़ाया हुआ और दीवाना है।
1: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون,
0: हम तो थोड़े दिनों अजाब डाल देते हैं मगर तुम फिर कुफ्र करने लगते हो।
1: यौम नबतशुल बतशतल कुबरा इन्ना मुंतकिमून,
0: जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे तो बेशक इंतकाम लेकर छोड़ेंगे।
1: वलकद फतन्ना कबलहुम कौम फिरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम,
0: और उनसे पहले हमने कौम फिराउन की आजमाइश की और उनके पास एक आली कदर पैगंबर आए।
1: अन अद्दू इलैया इबादल्लाह इन्नी लकुम रसूलुन अमीन,
0: जिन्होंने ये कहा कि खुदा के बंदों यानी बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ।
1: वअल्ला तअलू अलल्लाह इन्नी आतीकुम बिसुल्तान मुबीन,
0: और खुदा के सामने सरकशी न करो, मैं तुम्हारे पास खुली दलील लेकर आया हूँ।
1: वइन्नी उज़्तु बिरब्बी वरब्बिकुम अन तर्जुमून,
0: और इस बात से कि तुम मुझे संसार करो, अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ।
1: वइन लम तुमिनू ली फअतज़िलून,
0: और अगर मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ।
1: फदा

0: और रात और दिन के आगे पीछे आने जाने में, और वो जो खुदा ने आसमान से जरिया रिज्क नाजिल फरमाया फिर उससे जमीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा किया, उसमें और हवाओं के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं।
1: तिल्का

और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सबको अपने हुक्म से तुम्हारे काम में लगा दिया। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इसमें कुदरत खुदा की निशानियां हैं।

और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था उसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे और तुम्हारा ठिकाना दोजख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं।

नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया। नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: लाहौर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और प्रोग्राम जावदा जिंदगी के साथ एक बार फिर अली अजबद आपकी खिदमत में हाजिर है सर इरफान अली फानी साहब के साथ। तो मैंने आप ब्रेक से पहले भी आपको कहा था कि हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं सर इरफान अली फानी साहब से। तो सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नज्म व जब्त की खसूसियत के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए सर, जिंदगी में हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं आपने मुझे अब बताना है कि आप इस बात से एग्री करते हैं डिस एग्री, आपको मुकम्मल आजादी है इस बात पे बताने के लिए। मुझे ये बताइए कि हमारी जिंदगी में नज्म व जब्त कहीं ना कहीं पाया जाता है। अगर हम देखें कि कहीं लेट सपोज हम कहीं स्कूल में या यूनिवर्सिटी में हम कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं या हम किसी इंडस्ट्री में किसी जगह पर जॉब करने जाते हैं या हम इवन कोई शो करने जाते हैं तो हम सूट पहन के जाते हैं, फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाते हैं, तो हम फिर जो शर्ट पहनते हैं उसकी मैचिंग करके उसके साथ मैच करके हम जो है वो टाई का इंतखाब करते हैं। इसी तरह हमने जो बेल्ट लगाई होती है, ब्राउन लगाई है तो ब्राउन जूते, ब्लैक लगाई है तो ब्लैक जूते, तो कहीं ना कहीं नज्म व जब्त इन्वॉल्व तो हो रहा है। तो आपने ये बताना है नंबर वन चीज कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नज्म व जब्त तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपने इसकी खसूसियत के ऊपर भी रोशनी डालनी है, तो आप जरा थोड़ी सी आगाही कीजिए।
2: अच्छा अजबत, जो आपने बात की है ना कि डिसिप्लिन कहीं ना कहीं हम ना चाहते हुए भी फॉल करता है, कहीं ना कहीं मौजूद होता है, तो इस बात में कोई दो आरा नहीं है कि इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने से लेके बचपना, बचपने से फिर उसका जो कमसनी की उम्र होती है, लड़कपन, उसके बाद उसकी जवानी, जवाने के बाद बुढ़ापा, ये भी एक नज्म व जब्त के तहत ही परवान चढ़ता है। और बाकी क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं जैसे कि मैंने शुरू में कहा, और नेचुरल एनिमल हैं, फितरत की भी हम पैदावार हैं और मुआशरे की भी हम पैदावार हैं। जिस तरह से पूरी कायनात के अंदर एक जर्रे से लेकर सूरज की बेकराम वजूद तक, कायनात की एक छोटे से जर्रे से लेकर जो कायनात की पिनहाइयां हैं और जो कायनात की वुस्सतें हैं, एक एक चीज के अंदर वो जो नज्म जब्त हमें पाया जाता है। और बाकी दूसरी रही बात जो आपने मैचिंग की मिसाल दी, बिलाशुबा कि हम जब घरों में तैयार होते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा अगर मैंने इस रंग का सूट पहना हुआ तो उसके साथ ये चीज मैच करेगी, इस रंग के जूते जो है वो मुझे पहनने चाहिए, घड़ी की चेन इस तरह की होनी चाहिए, टाई किस तरह की होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर उन सारी चीजों का इंतखाब इस बात की दलील होता है कि कहीं ना कहीं हम उस डिसिप्लिन के अंडर जो ट्रेंड है, जैसे मैंने शुरू में कहा डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट सम प्रिंसिपल्स, सम रूल्स, के कुछ रूल्स सोसाइटी ने सेट किए हुए हैं कि हम इस तरह से आपको देखना चाहते हैं, तो जिस तरह से सोसाइटी हमको देखना चाहती है हम उस तरह से बनने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि लोग उसको, अब बाजुकात कुछ ऐसे लिबास पहन के हम दोस्तों को कह देते हैं कि भाई ये क्या तुम बन के आ गए हो, अब ये क्या बन के आ गए हो, क्या इस बात की दलील है कि वो चीज एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी जो आप पहन के आ गए हो। तो बुनियादी तौर पर जो आप किसी भी एक और, मैं बल्कि आपको मिसाल देता हूं कि आपने बहुत महंगा सूट ले लिया और बहुत आला पाए कि कोई 20-25-30 हजार रुपया अपनी जो है वो पर्सनैलिटी पे आपने लगा दिया, आप किसी पार्टी में चले जाते हो और वहां पे कोई ऐसा दोस्त आपको कह देता है कि अजबत यार ये तुम क्या बन के आ गए हो, मतलब कि ऐसा होता इतना भी आपने 20-30 हजार रुपया अपनी पसंद से अपने ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन किसी दूसरे का जब ये कह देना कि ये क्या बन के आ गए हो, इसका मतलब कि आपका फौरन से जो आपकी कैफियत होगी आप खुद अंदाजा लगा लो क्या होगी, कि आपका जो मोरल होगा वो कहां पे आ जाएगा, आपका एतमाद कहां पे आ जाएगा, आपको वो चीज चुभना शुरू हो जाएगी जो आपने इतनी महंगी पहनी हुई है। उसी वक्त अगर एक दोस्त आके आपके कंधे पे थपकी देता है और कहता है वाह अजवद आज तो दूल्हा लग रहे हो यार, कमाल कर दिया है, अब दिस वाज अ मोमेंट कि जब आपका वो जो डीमोरलाइजेशन हुई थी, जो आपको मोरल डाउन हो चुका था, वो आसमान पे आ जाएगा। अब यहां से आप अंदाजा लगाओ कि वी ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी और सोशल एक्सपेक्टेशंस, कि वो सोशल एक्सपेक्टेशंस बुनियादी तौर पर उन जवाबत और उसूल का नाम होता है जो हम कहते हैं ना कि मुआशरा हमसे ये मुतालबा करता है। अभी देखो हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, हम स्टूडेंट्स को भी जो पढ़ा रहे हैं बुनियादी तौर पर हम उनको वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो मार्केट में डिमांड है। डिमांड जिस चीज की जा रही है मार्केट के अंदर, अगर हम वैसी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो मार्केट के अंदर तो वो बच्चे नाकाम हो जाएंगे। लिहाजा हमने उनको उन उसूलों से, उन प्रिंसिपल से और उन तमाम अवामल से आशना करना होता है जो मार्केट में जाके उनके लिए कामयाबी का रास्ते का तयन कर सके। लिहाजा, और दूसरी बात, लिबास के बाद आप अपनी फिक्र पे आ जाओ कि इंसान के अंदर फिक्र में भी एक डिसिप्लिन होता है। फिक्र जो इंसान सोचता है, वो लोग जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं ज्यादा और पॉजिटिव कम सोचते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, वो लोग स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। आजकल हम बहुत सुनते हैं कि तलबा और तालिबात जो हैं वो सुसाइड की तरफ उनका जो रुझान है। अब ये क्या है कि जब आपकी सोचों में भी नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ गई, पॉजिटिविटी की कमी आ गई, बैलेंस सोचों का खत्म हो गया। वहां पे तो अभी मैंने जो वाक्या सुनाया कि एक ने आपको कहा अच्छे नहीं लग रहे हो, दूसरे कह दिया अच्छे लग रहे हो, मतलब बैलेंस हो गया। जब सोचें ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगी और पॉजिटिविटी कम हो जाएगी तो वो चीज डोमिनेट करते करते आपको डिप्रेशन तक ले जाती है। लिहाजा बहुत जरूरत है कि हमें अपने दीगर ताल्लुकात के अंदर लोगों के बारे में जो हम राय अपनी कायम करते हैं उस तनाजुर में भी एक डिसिप्लिन के अंदर रहना चाहिए, और वो डिसिप्लिन जो है वो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो हमारी पर्सनैलिटी में भी लेके
3: सर। ये बड़ी अच्छी आपने बात की है, बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन मुझे इस चीज को भी जानना है कि आपने समझते कि कहीं ना कहीं हमारे भी गलती है ना कि हम लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों की बातों पे सुन के परेशान हो जाते हैं, तो हमारी भी गलती इसमें है ना। हमें भी ये भी एक डिसिप्लिन है ना,
2: यस यस,
3: कि आपको ऐसा डिसिप्लिन कायम करना है कि लोग जो आपको बिला वजह क्रिटिसाइज करते हैं आपको इनको इग्नोर करके अपनी कामयाबी की तरफ चलना है, कदम कदम से कदम मिलाना है।
2: बिलाशुबा आप देखो कि एक तो हमारा पर्सनल जाती सतह पे हम जो मर्जी करते रहे, अब देखो एक अजवद की जिंदगी है या मेरी जिंदगी है जो मेरे घर की चार दीवारी में है, और एक वो जिंदगी है जो मैं घर से बाहर गुजारता हूं। चार दीवारी के अंदर जिस तरह से मैं रहता हूं क्या उसी तरह से मैं बाहर निकल के आता हूं? घर के अंदर जिस कैजुअल माहौल में या टी शर्ट के अंदर या जिस तरह की ड्रेसिंग आप करते हो अपने लिए अपनी प्राइवेट लाइफ में, क्या पब्लिक लाइफ में भी आप वैसे ही बनते हो? नहीं बनते हो। क्यों नहीं बनते हो? कि सोसाइटी इज नॉट एक्सपेक्टिंग, कि वो हमसे इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि भाई आप ऐसा बन के हमारे पास आओ। हमने जो हमारा खारजी अवामल है, जो हमारी खारजी जिंदगी है, उसके अंदर हमें चलना पड़ता है मुआशरे के साथ। अब जो आपने बात की कि हम हमारी इंटरनल लाइफ क्या है, कि हमने जिंदगी के अंदर कुछ मकासद का तयन कर रखा है, उस मकासद के अंदर उसकी कुछ प्लानिंग्स हैं, और उस प्लानिंग्स के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो आप कामयाब हो जाते हो। अब आप देखो हमारी जिंदगी की ना दो डायमेंशन होती हैं, एक हमारी जाती जिंदगी है, एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। जाती जिंदगी वो है जो मैं घर में अपनी गुजार रहा हूं और अपनी ख्वाहिशात के तनाजुर में गुजार रहा हूं। एक मेरी जिंदगी है जो मैं इस अदारे के अंदर है जहां मैं बैठा हुआ हूं। ये रेडियो की अपनी एक टाइमिंग्स है कि इस वक्त आपने आना है, यहां पे भी हमने बच्चों के लिए स्लॉट्स मखसूस की होती हैं कि यहां से यहां तक आपका टाइम है, यहां से यहां तक आपका वक्त है। अब ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। अगर अदारे का सरबराह फॉर एग्जाम्पल वो जाती नोयत पे ही अदारे को चलाना शुरू करते, उसी तरह से जैसे वो घर में जब दिल किया उठ पड़े, जब दिल किया सो गए, अदारे ने चलना है डिसिप्लिन पे कि भाई ये टाइमिंग है अदारा जो है वो ओपन हो जाएगा, ये टाइमिंग है अदारा बंद हो जाएगा। अब अदारे कैसे तबाह होते हैं कि जब अदारे का सरबराह खुद डिसिप्लिन से जो है वो नजरें चुराना शुरू कर देगा और खुद वो नज्म व ज़ब्त में नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल खुद कोई सरबरा एक या दो या तीन बजे अपने दफ्तर में आएगा तो उसके जो एम्प्लॉय हैं वो कैसे टाइम पे आएंगे भाई? ठीक है, तो अदारों की तबाही के ऊपर भी जो चीज मुनतिज होती है वो भी वहां का डिसिप्लिन होता है, वहां की तंजीम होती है। अदरवाइज जिंदगी के अंदर हर चीज कोलैप्स कर जाती है। हमारा पता जो बड़े सगीर में रहने वाले लोग हैं, लोगों का एक अलमिया, वो अलमिया ये है कि हम जो है ना रैपर को देखकर या जो पैकिंग होती है किसी चीज की उसको देख के चीजों से फैसिनेट होते हैं। अब जो मैं पहलू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाने लगा हूं वो बड़ा अहम है कि हमने ये नहीं देखना कि पैकिंग तो बड़ी खूबसूरत है और बड़ी महंगी है, क्या इसके अंदर जो चीज है वो इसकी जो खारजी खूबसूरती है वो उसके साथ कंपेटिबल भी है कि नहीं है। हम बड़ी महंगी चीज जब खरीद लेते हैं ये देख के बाहर से खूबसूरत नजर आ रही है लेकिन अंदर से जब वो खूबसूरत नहीं निकलती तो फिर मसाइल वही बिगाड़ पैदा हो गया। अब यही इसी चीज को आप जरा इंसानी जिंदगी में लो, वो लोग जो जाहिरी चेहरों को देखकर लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ज़ाहरी खूबसूरती को देखकर, ज़ाहरी खदोखाल और ज़ाहरी लिबास को देखकर लोगों की कशिश का शिकार हो जाते हैं, और लेकिन जब वो उनके करीब जाते हैं तो प्याज की तरह उनकी जब वो परतें उभरती हैं तो अंदर मैच नहीं कर रहा होता बाहर की खूबसूरती से। जब सूरत में और सीरत में कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, मुताबकत नहीं होगी, तो नज़्म व ज़ब्त का बेड़ा गर्क हो गया। आपके ताल्लुकात के अंदर प्रॉब्लम तभी होती है कि आपने किसी शख्स का इंतखाब किया था सिर्फ उसके ज़ाहरी चीज़ों को देखकर, लेकिन जब आप उसके करीब गए, कोई वक्त आपने उसके साथ गुजारा, तो पता चला कि जो सीरत थी वो तो सूरत के साथ मुशाबहे थी, उसकी नहीं बन रही है। तो फिर क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे मुझे बाहर से नजर आ रहा है वैसे ही अंदर से होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं क्यों नहीं हो पाता है, ये इसकी तरफ मैं थोड़ी सी तवज्जो दे के फिर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं कि देखो, हम कामयाबी के लिए एक प्लानिंग करते हैं, हम सुबह उठे, दिन रात हमने मेहनत की, हर वो काम किया जो कामयाबी तक मैंने पहुंचना था, कामयाब हो गया, मुझे शोहरत मिल गई, पैसा मिल गया, गाड़ी मिल गई, सारा कुछ हो गया। अब जब शोहरत के बाद की मंजिल होती है ना, वो आजादी की मंजिल होती है।
3: ओके।
2: और जब आप आजाद हो जाते हो तो आजादी का मतलब ये है कि आपने उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को छोड़ दिया जो आपने कामयाबी से पहले अपना रखे थे। अब जब उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप छोड़ देते हैं तो आप आजादी का जब मिस यूज करते हैं वहां पे आके फिर आपकी जो शोहरत होती है वो दिनों में आप देखते हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दिनों में आसमान की बुलंदियों को छूते हैं उनकी शोहरत, और दूसरे तीसरे महीने उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता, सिर्फ इस वजह से कि कामयाबी तो उनकी मिल गई थी लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो वही डिसिप्लिन था, वही नज्म व ज़ब्त था जो कामयाबी से पहले वो अमल कर रहे थे। लेकिन जब वो आजाद हो गए और आजादी की मंजिल ने उनको कामयाबी से फिर बहुत कोसों दूर कर दिया।
3: बेशक, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, और हमें बिल्कुल ये बात जो है अपनी लाइफ में भी इसको इंटरफेयर करना चाहिए और इन चीजों से सीखना चाहिए कि नाशुक्री का जो एलिमेंट है वो भी एक वर्स्ट है और आपको नाकामयाब से वो नाकाम कर देता है। और हमें हर वक्त ये सोच जहन में रखनी चाहिए कि इंसान जो है, इंसान का सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला उसको देता है, और अगर अल्लाह ताला इज्जत दे सकता है तो इज्जत ले भी सकता है। और अब एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो जाता है, ब्रेक के बाद हम जो बात करने वाले हैं वो अदम मौजूदगी के फैक्टर के ऊपर बात करेंगे कि जब हमें हमारी जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त नहीं होता तो क्या होता है। तो इसके ऊपर सर इरफान अली फानी साहब से इंशाल्लाह ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCB की दुनिया और प्रोग्राम जावेदा जिंदगी के साथ एक बार फिर अली अजवद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो हम अब सर से जो सवाल करने जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। देखें, अदम मौजूदगी पे बात हो रही थी कि जब दस्तयाबी नहीं होती, जब ये मौजूद हमारी लाइफ में नहीं होता नज़्म व ज़ब्त का फैक्टर, तो उसके ऊपर बात करने जा रहा था मैं कि क्या होता है। इसके साथ साथ इस चीज पर भी हम बात करेंगे कि सर ये एक लम्हा फिक्रिया भी है और बड़ा हौलनाक एक फैक्टर है कि हम जब बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके नज्म व ज़ब्त पे हम बखूबी अमल करते हैं। उनकी एक एक चीज जो है उसको हम लेकर चलते हैं, उनकी जो डिसिप्लिन है उनको हम उसी तरह निभाते हैं और इसी तरह उन पर अमल करते हैं जिस तरह वहाँ के लोग सिटीजन जो है वहाँ के करते हैं। लेकिन हम जब वापस अपने मुल्क में आते हैं तो पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि हम दोबारा वही चीज दोबारा आ जाती है कि हम जब अपने मुल्क में रहना है तो नज़्म व ज़ब्त को फॉलो नहीं करना है, बाहर जाना है कहीं भी तो नज़्म व ज़ब्त को फॉलो करना है। तो इसके पीछे क्या थ्योरी है आपके मुताबिक?
1: अच्छा, आपने अब सवाल के दो हिस्से हो गए कि एक अदम मौजूद जब होता है, नज़्म व ज़ब्त की जिंदगी में मौजूद नहीं होता तो क्या होता है।
0: बिल्कुल,
1: इसकी चीज में आपको, और आपका जो दूसरा सवाल है वो भी इसी वाक़े के साथ जो मैं आपको बताने लगा हूँ
0: ताल्लुक बड़ा गहरा है इन दोनों चीजों।
1: बिल्कुल। अब एक बाबा जी थे और बाबा जी के पास एक महफिल जमी हुई थी लोगों की। अच्छा। और बुजुर्ग थे कोई अल्लाह के, तो वहां पे एक बंदा आया। जैसे पाकिस्तान में बेरोजगारी बेतहाशा है और हमारी ये कोशिश होती है कि हम मुल्क से बाहर जाके कुछ करें, तो उसने कहा बाबा जी दुआ कर दो। बाबा जी ने कहा जी क्या दुआ करवानी है? उसने कहा बाबा जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अच्छा, बाहर क्यों जाना चाहते हो? बाबा जी मैं कामयाब होना चाहता हूँ। अच्छा, कामयाब कैसे हो गए? जब आप बाहर जाओगे वहां की तो जिंदगी बड़ी सख्त है। कहते हैं जी फिर भी मैं सख्त भी है तो मैं वहां पे काम कर लूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा जब आप बाहर जाओगे तो वहां पे तो आपको सुबह सवेरे उठना पड़ेगा, वहां पे तो आपको दिन रात काम करना पड़ेगा, वहां के जो कवानीन होते हैं अगर आपने कोई भी जो कानून है वहां का तोड़ दिया तो वो तो आपको जेल में बंद कर देंगे और काम चोरी तो वहां पे हो ही नहीं सकती, वो पूरा काम आपसे लेंगे। उसने कहा बाबा जी मैं सारा कुछ करूंगा। बाबा जी ने कहा अच्छा, जब आप बाहर जाते हो तो तुम कामयाबी के लिए हर वो काम करना चाहते हो, बर्तन भी तुम कहते हो कि मैं खुद लूंगा, कपड़े भी धो लूंगा, सुबह सवेरे मैं उठ भी पड़ूंगा, जो मेरे काम की नेचर होगी उसके मुताबिक मैं वहाँ पे अपने आप को ढाल लूंगा, वहाँ के कवानीन पे भी अमल करूंगा, वहाँ पे तो तुम ये सारा कुछ कर लोगे क्योंकि तुम्हें यकीन है कि मुझे वहाँ पे कामयाबी मिल जाएगी। मतलब तुम खुद भी ये मानते हो कि कामयाबी मुझे तभी मिलेगी, पैसा मैंने तभी कमाना है या मेरा कुछ बनेगा जब मैं ये सारे काम खुद करूंगा। सुबह सवेरे खुद उठूंगा, कपड़े भी धोऊंगा, काम शाम इधर उधर जितने भी हैं कवानीन पे भी अमल करूंगा। अगर मेरे बच्चे यही काम तुम पाकिस्तान में कर लो, यही सुबह सवेरे उठना, यहाँ के कवानीन पे अमल करना, काम चोरी से यहाँ पे भी भागना कि मैं काम चोरी नहीं करूंगा, अपने काम अपने हाथों से करना बजाय कि दूसरों के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाओ, यहाँ मुल्क के जो रियासत के बनाए हुए कवानीन हैं उनका आप एहतराम करो, वहाँ के यहाँ के जो मुआशरती इकदार है उनका आप एहतराम करो, तो वो काम जो बाहर जाके आप करोगे और आपको कामयाबी मिल जाएगी, वही काम जब आप पाकिस्तान में भी करोगे तो कामयाबी तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो ये वो चीज है जो हमारे समझने वाली है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपने आप को अडेप्टेबल कर लेते हैं उस सिचुएशन से, और हम उन चीजों की, अब मैं बड़ा हैरान होता हूँ लोगों की बात सुन के, कि जिन कवानीन की वजह से हम बाहर के मुल्क के नज़्म व ज़ब्त की तारीफ कर रहे होते हैं कि यार वहाँ पे तो हर चीज रूल्स पर चलती है, सड़कों पर थूकना भी जो है वो गलत है, इशारों पर चलना वहाँ पे कोई सोच नहीं सकता कि इशारा तोड़ दे, वही लोग जो ये बात कर रहे होते हैं उसी वक्त वो इस मुल्क में इशारे भी तोड़ रहे होते हैं, उसी वक्त वो खाना खाते हुए जो बचती हैं चीजें वो सड़कों पर फेंक के चले जाते हैं, केला आते हुए उसका छिलका सड़कों पे फेंक के चले जाते हैं, वही लोग जो ये बात कर रहे थे कि बाहर ये काम नहीं कर सकते आप और वहाँ पे तो आप जाके सारा कुछ कर लेते हो, तो भाई इस मुल्क के साथ कोई खास दुश्मनी है आपकी कि बाहर जाके जो बाहर के लोग हैं, जो आपकी अपनी जगह नहीं है, जहाँ आपके अपने लोग नहीं रहते हैं, जहाँ आपके वालिदैन, आपकी अकदार, आपका जो खमीर है वो नहीं है, जिस जगह आपका खमीर है, जिस जगह आपकी वाबस्तगी है, जहाँ आपके अपने रहते हैं, जहाँ आपकी जुबान बोलने वाले, आपकी तरह दिखने वाले, आपकी तरह लिबास पहनने वाले रहते हैं, वहां पे आप उन कवानीन का अमल ही नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो तजाद है ये मुआशरों में बिगाड़ पैदा

0: करता
1: है। अच्छा सर, एक चीज ये भी है ना कि अब एक बात थोड़ी सी ऑफ टॉपिक हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चाहूंगा कि हम करें इसके ऊपर गुफ्तगू। बाहर जब आप बाहर का एक सिलसिला ये भी होता है ना कि उनके रूल्स हैं, उनका भी खैर नज़्म व ज़ब्त का सिस्टम है कि वहाँ पे ये भी है कि एक तो साइन बोर्ड्स बड़े ज्यादा लगे होते हैं,
0: बिल्कुल ठीक है,
1: जगह जगह पे लिखा होता है बकायदा कि नो स्पिटिंग, नो गार्बेज, बकायदगी से लिखा होता है। और उसके अलावा साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई जाने अनजाने में कोई गलती कर भी देता है तो उसको फाइन किया जाता है।
0: बिल्कुल ठीक।
1: पाकिस्तान में ये नज़्म ज़ब्त मेरा ख्याल है कि साथ आना चाहिए, इजाफा होना चाहिए।
0: दो अप्रोचेस होती हैं अकवाम को डिसिप्लिन करने के लिए। एक तो होती है बॉटम अप कि नीचे से आप कहो जी लोग खुद ही नज़्म ज़ब्त में आ जाएं। एक होती है टॉप डाउन कि ऊपर से जो आपके लीडर्स हैं, जो आपके ओपिनियन मेकर्स हैं, जो आपके मॉडल्स हैं, जब वो डिसिप्लिन के तहत चलेंगे तो वो खसूसियत मुआशरों के अंदर भी इनकलकेट होना शुरू हो जाती है। जब इशारा लीडर्स तोड़ना शुरू कर देंगे, जब नज़्म व ज़ब्त को, जो नज़्म व ज़ब्त बनाने वाले लोग हैं, लॉ मेकर्स, जब लॉ ब्रेकर हो जाएंगे तो वहां पे आके अकवाम के अंदर ये खसूसियत फिर पैदा नहीं होती है। सबसे पहले रोल मॉडल्स। अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और क्लास के अंदर पढ़ाते हुए जो बच्चे हैं, जाहिर बात है कोई किस तरह से सोचता है, कोई वहां पे शरारतें भी करता है, कोई बोलता भी है, अब क्लास के डिसिप्लिन को भी मेंटेन करने के लिए टीचर्स ने जो है वो अपनी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करना होती हैं। एक चीज होती है तालीम, एक चीज होती है तरबियत। तरबियत आमतौर पे घर से मिलती होती है, तालीम अदारों से मिलती है। हमारा मसला ये हो गया कि जिन्होंने तरबियत करनी थी वो खुद तो बहुत बिजी हैं। क्यों? बाप भी जॉब करता है, माँ भी जॉब करती है, दोनों जॉब पे निकल जाते हैं, बेटा अकेला घर में किसी आया के पास है या कहीं और है। अब इसका क्या हुआ कि जो तरबियत होनी थी, क्योंकि नानियों दादियों दादियों वाला दौर तो अब खत्म हो चुका, जो तरबियत होनी थी तरबियत करने वाला अब है नहीं। अब जब बेतरबियत बच्चा एक क्लास में आ जाता है, वहाँ पे अब हम उनको तालीम तो सिखा रहे होते, उनको राइट एंड रॉन्ग तो बता रहे होते हैं, लेकिन जिस वक्त बातें क्योंकि पीछे तरबियत नहीं है। अब यहाँ पे जो मुअल्लिम होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनका डबल हो जाता है कि वहां पे आपने सिर्फ बच्चों के अंदर मालूमात इनकलकेट नहीं करनी है, इन्फॉर्मेशन ही आपने लोगों बच्चों को नहीं देनी है, आपने अब तरबियत का भी जो बेड़ा है आपने उठाना है, उनकी किरदार साजी भी आपने करनी है, उनकी शख्सियत साजी भी आपने करनी है। वो क्योंकि तरबियत नहीं है तो वो दो नंबरियां करेंगे क्लास में, क्लास में लेट भी आएंगे, बदतमीजी भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन आपने बाहसियत रोल मॉडल, आपने उनको एक ऐसी चीज बतानी है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो उस सिचुएशन पे रद्दे अमल हमने कैसे देना है। तो ये वो चीजें हैं जो बड़ी जरूरत है जिसको हमारे मुआशरे की, और अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों के अंदर जो वालिदैन हैं वो भी इसका जरा बेड़ा उठाएं, और जो असातिज़ा हैं वो भी सिर्फ मालूमात पहुंचाने के अलावा भी जो किरदार साजी का अमल है वो भी इसको शुरू।
1: सर आप नहीं समझते कि हमारी भी जिम्मेदारी है एज अ सिटीजन, जितने उसातिज़ा कराम हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने कॉलेजेस हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है, उन पे आयद होती है बाकायदा कि वो मतलब कुछ ऐसी वर्कशॉप्स करवाएं, सेमिनार्स होते हैं तो उनमें बताएं, स्पेशल इस पे जो है प्रोग्राम्स करें, कॉन्सर्ट्स करें, इवन एंकर्स आरजेस जितने भी, सबकी जिम्मेदारी है कि नज़्म व ज़ब्त के लिए जो है एक आवाज बुलंद होनी चाहिए, क्योंकि बेशक वही मुल्क तरक्की करते हैं जिसमें नज़्म व ज़ब्त का सिस्टम है।
0: वो कहते हैं कि मर्ज बढ़ता गया यूं यूं दवा की। अब मैं बड़ा हैरान होता, वक्त कम है और बाजरा लंबी ना हो जाए, कि जितने अदारे ज्यादा बन रहे हैं, जितनी तालीम ज्यादा हो रही है, जितनी कॉन्फ्रेंसेस ज्यादा हो रही हैं, कितने ही मजाहबी बड़े बड़े मजलसे, लाखों की तादाद में लोग वहां पे होते हैं, हजारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लेकिन मुआशरे का इंतशार है कि बढ़ रहा है कम नहीं हो रहा। यहाँ पे कहीं ना कहीं बुनियादी गलती है। वो गलती क्या है, अब ये बात हम अपने सामईन पे जोड़ेंगे कि आइडेंटिफाई हमने करना है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर करप्शन में इजाफा हो रहा है, लोगों की जो बेनज़्म जिंदगी है वो बढ़ रही है, हर सतह पे बिगाड़ और इंतशार है, तो कहीं ना कहीं ये सारे अदारे जो हैं वो वालिदैन, असातिज़ा, मीडिया, ये सब कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार तो नहीं है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा पॉइंट है। एक यहाँ पर फिर ब्रेक का टाइम हो जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, सारी है और اور بریک کے بعد جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ امپلیمنٹیشن کے اوپر بات کریں گے کہ نظم و ضبط کا ڈسپلن کا امپلیمنٹیشن سوسائٹی میں ہے جو وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے اور امپلیمنٹیشن کرنے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پر ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ جڑے رہیے, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا, پروگرام جاوید زندگی میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: हेलो, यू आर लिसनिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम योर आरजे रमशा जैदी विद द न्यू हेल्थ टिप ऑफ द डे। नॉट ऑल कार्ब्स आर क्रिएटेड इक्वल। Refined carbs have been highly processed and have had all the fiber removed from them. They are low in nutrient and can be extremely harmful. Studies show that refined carbohydrates are linked with overeating and numerous metabolic diseases. That's all from the segment Health Tip of the Day. Stay tuned with FM 92.6 UCP Ki Duniya.
0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
2: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: Match 2.6. नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Health Tips by FM 92.6. Many kids and grown-ups don't drink enough water through the day. Healthy kids drink a lot of water so that they stay fresh and hydrated. Help your kid building a healthy water drinking habit. Drinking water can be made exciting and fun with just a little help with fruits. If your kids get bored by drinking plain water, you can help them by interesting by adding a splash of lemon or fruit juice. Not only will they find the taste interesting, but the add fruity juice will make them more healthy.
1: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

0: 90166 on 1.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6 UCP की दुनिया।
5: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।